0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Yes, some people got it. कुछ लोग देर नॉडिंग इन देयर कार्स एंड आई नो व्हाई एंड यू नो व्हाई आई प्ले दैट सॉन्ग आउट बिकॉज इस फिल्म का ये जो गाने का जो फिल्म है इट्स गॉट अ फुटबॉल कनेक्शन. आज 11th जून इज व्हेन द फीफा वर्ल्ड कप इज स्टार्टिंग एंड इफ यू हैव फिगर्ड आउट कि इस गाने का फुटबॉल से क्या कनेक्शन है, फिल्म का नाम क्या है, देन गिव मी अ कॉल, लेट मी नो 800-106-2. आई लव आस्किंग यू क्वेश्चंस सो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टेस्टिंग कि आप कितना चुस्त फील कर रहे हैं ऑन योर वे टू वर्क. या सो व्हाट कनेक्शन विद फुटबॉल डज दिस सॉन्ग हैव. बिल्लो रानी आनंद राज आनंद का ये गाना है. इन दिस फिल्म देयर वाज आई थिंक अरशद वारसी, John Abraham. If you know, send me a message on 4305 or you can give me a call on 800-1062. This is The Big Breakfast with me, Sid.
1: Beat 106.2, Fast Track Song of the Hour, brought to you by TIFFDrive.ae.

0: देखो देखो वो आ गया।
1: नाम है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: Zinda Banda. That's exactly what I like to see early in the morning. What makes you really Zinda in the morning? That's the question.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: क्यों होता है ऐसा कि जब सुबह सुबह का टाइम जो इतनी सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है दैट इज द वियर्डेस्ट इट ब्रिंग्स अप द वियर्डेस्ट हैबिट्स इन अ पर्सन राइट सुबह उठ के व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू आई मीन व्हाट आई डू इज सबसे पहले Obviously, what everybody does. I think 99.9% of the people in this world, जब सुबह उठते हैं तो पहला काम करते हैं अपना फोन चेक करते हैं. I don't care what it does to my eyesight. Every day there's some article or the other जो कहता है कि आपकी हेल्थ ऐसे इफेक्ट होगी आपकी हेल्थ ऐसे खराब होगी. Do not check your phone first thing. But how can you not? It is like your connection with the world. So once you wake up, you want to see कि कुछ मैंने miss तो नहीं कर दिया. तो you have to. So once that happens, आंखें वाँखें मल के, I have 2 glasses. Of water. If there's a weird morning routine that you follow and agar aap share karne ke mood mein, give me a call 800-1062 par. Yes, Suniti Chauhan ka ab classic gana, show me the thumka bhi ab classic gano ki category mein aata hai yaar. 8656, this is the perfect way to start your day. It's called The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे तेरे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अलकूज, अलगिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
3: Think car rentals are expensive? Think again, because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: The Big Mix. Miss kiya gaya?
4: चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
5: You know, we've done this in, you know, our life at some point, हम सब ने ये किया है कि हमें या तो अपने लिए या तो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी ना किसी के लिए कुछ खरीदना हो, हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे तो मम्मी पापा के पैसे लेने होते थे। अब अगर सीधे मांगने पर नहीं मिलते थे तो कभी कभी हमें टेढ़े तरीके यूज करने पड़ते थे, यू नो, चुरा लिया जाके, थोड़े बहुत पैसे निकाल लिए, 20 दिरहम, 50 दिरहम, जो भी है निकाल लिए जाके, एंड मतलब जाके ले लिया जो भी लेना था अपने पार्टनर के लिए। यहाँ पे ऐसी छोटी मोटी चोरियां नहीं चलती, यहाँ पे इन्हें कुछ बड़ा करना था। तीन लड़के नागपुर से आए, उन्होंने डिसाइड किया हम चुराएंगे लग्जरी टैप्स, नल। हम लग्जरी नल चुराएंगे, उन नलों को बेच के हम अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए आईफोन्स खरीदेंगे। इन लोगों ने 11 लाख वर्थ के नल चुरा तो लिए, हम नल जब बेचने गए हैं वहां पे जो खरीदने वाले कहते हैं नल कौन लेगा इतने पैसों के लिए, वो भी 11 लाख। उन्हें टोटल कुल मिला के मिले सिर्फ 20,000, और तीन क्या एक भी आईफोन नहीं खरीद पाए।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 10 AM to 2 PM. The Big Mix with Zohra, only on Big 106.2, The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: It's 7:23. Let's start with the capital, Abu Dhabi. आपको हल्का बिल्कुल ट्रैफिक मिलने वाला है heading towards the University of Abu Dhabi. इसके अलावा everything seems to be quite smooth going. Getting into Masdar City, you might find a bit of congestion as well. चलते हैं E44 in Dubai. Going towards 311 at the junction of JBD, you'll find 4-5 minute ke liye traffic is building up. Going towards Business Bay from D3. Iske alawa chalte hain 311 ki taraf, jahan par aapko 1-2-3 pockets of traffic milenge. Sabse pehle getting out of city center Zaya, heading south towards Mohesna, then city center Mirdif ke bahar there is a bit of congestion. And then getting towards Alwar Kawan DSO ki taraf jata hua traffic. Also, Ribas mein thoda bahut congestion as you take that exit going towards Festival City from city center Mirdif. Yahan par milegi aapko 3-4 minute ki der.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
7: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
8: उही बाबा।
0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए GoChat कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: If there's one person जिसकी लाइफ में सबसे ज्यादा ड्रामा चल रहा है, it is हार्दिक पंड्या।
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood।
1: चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ में तो उनके दो दो हिस्से हो गए ना। IPL की लाइफ एक अलग ही ड्रामा चल रहा है उसके अंदर, कि वो कौन सी टीम में होने वाले नेक्स्ट ईयर, इज ऑल दोस रूमर्स ट्रू और नो, कभी वो पोस्ट को हटाते हैं, कभी फिर वो रूमर निकलता है कि MI के साथ क्या चल क्या रहा है भाई। बट देन देयर इज नो लेस ड्रामा when it comes to him playing for India as well, because Hardik Pandya has been ruled out for that ODI series against Afghanistan. Rohit Sharma, by the way, has joined the squad, aur 3 din ke andar hi, I think it was India's biggest ever test win. They won by an innings and some 300 runs against Afghanistan. But yeah, परसों से शुरू हो रहा है ये ODI सीरीज। डे आफ्टर टुमारो सैटरडे इज व्हेन द फर्स्ट ODI इज गोना हैपन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। भाई दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट शुरू होने वाला है, आपको क्रिकेट की बड़ी हुई है यार। मोर ऑन द फीफा वर्ल्ड कप दैट स्टार्टिंग टुडे, इट्स द 11th ऑफ जून कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल। फिलहाल दिस इज दिलनू एपी टिल्लौर, दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड। गुड मॉर्निंग।

0: Wow, your hair color looks stunning.
1: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
0: Yeah, right.
1: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
0: Really?
1: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
0: I'm buying it right now.
1: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
2: The Big Breakfast brought to you by Jator UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
3: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो?
4: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
3: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
5: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
6: Bro, imagine. You book your dream home and then drive away in a brand new Jator T2.
7: Yeah, right. I wish.
6: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Al Furjan before 30th of June and boom, the Jator T2 is yours.
7: And the apartments?
6: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
7: I'm going now.
6: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
2: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: Good morning. It is exactly 8:30 on the clock on this Thursday ki subah. Let's take a look sabse pehle at some unusual traffic situations. Sabse pehle आपको D83 पे ट्रैफिक मिलने वाला है। रिबात स्ट्रीट इज वेरी अनयूजुअली बिजी टुडे। रिबात स्ट्रीट एंड ये E11 के आसपास यूजुअली यू फाइंड ट्रैफिक सिटी सेंटर मिर्ज़िफ के आसपास व्हेन यू गेट टेक दैट एग्जिट गोइंग टुवर्ड्स फेस्टिवल सिटी। वहां पर तो है ही 3-4 मिनट की देर, बट देयर इज एन इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड एट रिबात स्ट्रीट राइट एट द जंक्शन एज यू गेट इनटू E11 फ्रॉम D83, सो बी केयरफुल आउट देयर। इसके अलावा D89 आल्सो हेडिंग वेस्ट गोइंग टुवर्ड्स देरा, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर यू फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन। देन D91 इज अ बिट कंजेस्टेड, बेरूत स्ट्रीट, डमास्कस स्ट्रीट का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। एंड S102 शारजा रिंग रोड इज क्वाइट बिजी, S116, 112 इन शारजा इंडस्ट्रियल, स्पेशली अराउंड इंडस्ट्रियल एरिया 6 यू विल फाइंड 4-5 मिनट की देर। E11, 311 एज यूजुअल हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा तो बिजी है ही। एंड 611 पर नसमा सेंट्रल पार्क गोइंग टुवर्ड्स अलवी यू विल फाइंड 4-5 मिनट की देर।
2: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
1: Burger craving? Pizza craving? Why choose when you can have both? Introducing the new Cheddar Burger Pizza Collection from Papa John's. Dive into Double Cheddar Nashville, or the Juicy Chicken Burger, or the bold flavor-packed Beef Burger Pizzas. It's burgers and pizza, together like never before. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Order now.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
3: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ दो घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
6: 9:13 and it is quite hot and sunny on this Thursday morning. 34 degrees Celsius right now. Feels like 42 degrees. Highs of 36 right now. Lows of 32 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts. The number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets. Spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.in.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
2: अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
3: ब्रो, इमेजिन यू बुक योर ड्रीम होम and then drive away in a brand new Jador T2.
4: Yeah, right. I wish.
3: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Alforjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
4: And the apartments?
3: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
4: I'm going now.
3: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
5: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
6: Listen to her every day.
7: Mugembo, khush hua.
6: Hi Clarence.
8: Hi Mansi.
6: मैं पूछ रही हूँ, what are not so obvious signs जिससे आपकी बीवी आप पे शक करेगी? क्योंकि मैं बात कर रही थी एक वीडियो की जिसमें गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के बाथरूम में फेस वॉश देखा और वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि यूजुअली लड़के जो है साबुन से ही मुंह धो लेते हैं, उसी से बाल धोते हैं ना, तो उसे शक हुआ। तो आपकी बीवी किस चीज को लेकर शक करती है आप पे या कर सकती है?
8: ऐसे तो शक नहीं करती, क्या बोलूंगा, आई एम नॉट फाइंडिंग दोस वर्ड्स, बट शी इज लाइक का वो डाउट नहीं करती हो।
6: आज तक कभी शक नहीं करा?
8: नहीं नहीं,
6: मतलब यू आर वेरी गुड हस्बैंड और यू आर वेरी स्मार्ट।
8: हां, कभी कभार अगर गाड़ी की सीट एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो जाए तब वो पकड़ेगी, गई यहाँ कौन बैठी थी या बैठा था, अगर बैठा था।
6: वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
8: बैठी थी ये तो देन शी इज जस्ट लाइक इट्स लाइक व्हाट यू से फ्रेंडली वे।
6: There's nothing that we ask you guys in a friendly way, mind you. We might just pretend that we're very casual about it, but the moment we figure out the reality, there is nothing casual about us.
9: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. Beat of Bollywood.
10: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata. Are jaldi hata yaar sunna.
9: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
11: 9:25 and let's take a look at some unusual traffic. Aaj subah you'll find chalte hain sabse pehle E11 par. E11 you'll find Business Bay ki taraf jata hua traffic heading north right after Al Safa. You'll find a bit of congestion. There's been an incident being reported from there. Then Maidan Road pe in Al Quds area, you'll find a bit of congestion right after Bowling Center. 44 per the usual going towards Business Bay from D3 Al Khail Road per. Then D7 is quite congested, which is Financial Center Street. And then D75 the usual traffic Dubai Frame ke bahar in both directions heading east and west. You'll find 2-3 minute ki there. Airport Road is a bit congested. And dekhte hain aaj abhi Ribat Street ka traffic. Haan, it is now back to normal. There was quite a lot of congestion earlier today, but ab sab kuch simat chuka hai. There is 311 E11 heading south going towards Dubai from Sharjah. You'll find the usual 7-8 minutes ka delay.
9: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव? थिंक अगेन, बिकॉज राइट नाउ द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल इन द UAE इज हियर फॉर जस्ट 899 dirhams. यस, 899 dirhams अ मंथ. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: A Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy. Big 106.2. That's My Song by E. And.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है देखिए।
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood. Early in the morning, the Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetour UAE, part of Elite Group Holding.
3: This summer, drive home a new Jetour SUV. Buy now, pay next year, zero VAT or zero interest with EMI starting from 966 dirhams. TNCs apply.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: बहुत ज्यादा गर्मी आज है, 35 डिग्री सेल्सियस है बाहर, बट ऑलरेडी फील्स लाइक 44। हाईज आ जाएंगे 36 तक, लोज जाएंगे सिर्फ 32 तक। ह्यूमिडिटी ऑलरेडी इज एट 55%, व्हिच मींस वेरी वेरी हॉट फॉर 10:20 इन द मॉर्निंग।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
8: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: This June, it's game on with Big Ticket.
3: A guaranteed 25 million dirhams up for winning.
2: Plus, 5 more winners taking home 1 million dirhams each.
3: And 4 25,000 dirhams winners every week, all the way to the final whistle.
2: Score big. There's plenty in play.
3: Buy your ticket now at bigticket.ae.
4: This is an 18-plus game. Play responsibly. TNCs apply.
5: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: Yes, quick look on the roads. E311 Sheikh Mohan bin Zayed Road, अगर आप लेकर शारजा की तरफ जा रहे हैं, वहां पे मल्टीपल कार एक्सीडेंट्स रिपोर्टेड अराउंड D97 अमान स्ट्रीट के पास। एक कार एक्सीडेंट व्हिच इज कॉजिंग अबाउट 10 मिनट डिले। E311 साउथ अबुधाबी एग्जिट है ये। S102 शारजा रिंग रोड, हैवी बंप टू बंपर ट्रैफिक फॉर अबाउट 35 मिनट्स। वहां पे एक मेजर कार एक्सीडेंट की वजह से ये डिले मिलेगा। उसके अलावा E11 अल इत्तेहाद स्ट्रीट, वहां पे भी हैवी ट्रैफिक फ्रॉम ममजार हेडिंग टुवर्ड्स नादा 1, वहां पे आपको मिल जाएगा 12 मिनट का डिले। एनी अदर ट्रैफिक अपडेट आप हमें बता सकते हैं 4305.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

पिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी डिस्काउंट।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसलखोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
5: Listen to her every day.
6: Mugembo! Khush hua!
7: Hi, Divankar.
8: Hi, Mansi. Good evening. How are you?
7: I'm good. How are you? How was your day?
8: Day was fantastic, quite productive.
7: So, aap corporate job karte hain kya?
8: Ji.
7: Lagi
8: hai. Oil and gas.
7: Aapki language se lagi hai. Total email wali language hai ye. Productive and fantastic. Duly noted. Regards. I love this. You know, मुझे बिल्कुल ईमेल लिखना नहीं आता है। Thankfully, God has been very kind कि मेरे काम में मुझे ईमेल लिखने नहीं पड़ते हैं। And thanks to ChatGPT, मतलब अब तो मेरी जिंदगी ChatGPT संभाल रहा है। मेरे तो डिसीजंस ही वही लेता है, मैंने उसको दे दिया जिम्मेदारी। कभी कभार पर ChatGPT इतनी भारी इंग्लिश लिखता है ना ईमेल्स पर कि मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ। तो मुझे लगता है ये आगे भेजूंगी तो वो सोचेगा ये कहाँ से हार्वर्ड से पढ़ के आई है भोपाल की लड़की। बैंग ऑन, 5 सेकंड के अंदर आप मुझे बताओ आपको मजा आया कि नहीं, रिव्यू दो मेरी इस कॉल का।
8: 10 out of 10.
7: Will you be touching base again tomorrow?
8: Definitely, I'll try.
2: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
9: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ।
10: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
13: 35 डिग्री सेल्सियस बाहर, हाईज आज जाएंगे 37 तक, लोज विल ड्रॉप डाउन टू 32, ह्यूमिडिटी एट दिस पॉइंट इज एट 55%।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरीन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: SellDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: 11:33 ho chuke hain. Haan ji, Zohra ke saath ho aap on The Big Mix. Aur abhi release hua hai ek aur trailer. Humne isse pehle baat ki of the teaser that dropped for Alpha last evening, looking absolutely incredible. Bahut aise kam Bollywood ke aajkal movies aa rahe hain jo teaser dekh ke lag raha ho yaar, this movie is going to be insane. अल्फा का देख के मुझे ऐसा लगा कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड. एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन सेट कंसिडरिंग इट्स द फर्स्ट फीमेल लेड YRF स्पाई मूवी दैट इज बीइंग मेड. अभी जो ट्रेलर रिलीज हुआ है विच इज़ फॉर द मूवी वेलकम टू द जंगल. ऑनेस्टली आई डोंट नो वॉट टू से बिकॉज 4 मिनट का ये ट्रेलर है. 4 मिनट का ट्रेलर कौन बनाता है, मतलब 1 मिनट 2 मिनट समझ आता है. 4 मिनट का ट्रेलर आपने टेक्निकली ऑलमोस्ट पूरी मूवी दिखा दी है इस ट्रेलर में. आई हैवंट वॉच्ड इट येट, आई एम गोना वॉच इट एंड देन गिव यू माय रिव्यू. बट आई रियली होप दिस मूवी डज नॉट डिसअपॉइंट, बिकॉज जब भी पास्ट में ऐसे हुआ है कि एक बहुत बड़ा स्टार कास्ट आपने असेंबल किया और एक मूवी बनाई है, वो मूवी 99% ऑफ द टाइम फेल ही हुई है. Say whoa!

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood. The Big Mix, brought to you by insurancemarket.ae.
2: Insurancemarket.ae.
1: Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

सचिन टंडन की आवाज यार, क्या पावर इस गाने में। बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए, कुछ लिरिक्स इतने डीप होते हैं कि उसका इम्पैक्ट ही इसीलिए आता है बिकॉज दिस सो सो मीनिंगफुल, राइट। ज़ोरा के साथ हुआ, फिर 11:46 ऑन द बिग क्लॉक, हेडिंग इनटू द थर्ड आवर ऑफ द शो। डेफिनेटली हैव टू टॉक अबाउट दिस ट्रेलर। मुझे लगा था बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा वेलकम टू द जंगल का ये 4 मिनट लंबा ट्रेलर, बट कैन आई जस्ट से आई माइट बी रॉन्ग हियर।

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Two.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. Missed your morning buzz?
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
0: ये सुनो।
3: अजिंक्य, गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग सर।
3: यार आप तो लाइक प्रॉपर साइंटिस्ट हैं यार, प्रॉपर वाले। आपका दिन कैसा रहता है?
4: Not like much challenging, but thing is what we are doing the quality check for the medicines what we are taking. So जो दवाई हम लोग खाते हैं उसकी microbiological purity check करना ये हमारा profile रहता है।
3: Oh wow यार। So nothing to do with a virus or bacteria or something. मेरे को लगा कि usually ये germs इंसानों के पीछे दौड़ते हैं, ये इंसान इन germs के पीछे दौड़ता है। मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
4: कंपनी का जो हवा रहता है, पानी रहता है, वो सब चेक करना पड़ता है।
3: अच्छा, तो किसी कंपनी में आप जाते हो, पूछते हो हवा पानी कैसा है आपके? अरे आप बताओगे ना कैसा है, मैं क्या बताऊं आपको? आप इसी काम के लिए आए हो। तो आप कंपनी की हवा पानी चेक करते हो। ये अमेजिंग जॉब प्रोफाइल आपका है यार। आई मीन इट्स
4: एग्जैक्टली
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: beat of Bollywood. The Big Mix, brought to you by insurancemarket.ae.
1: Insurancemarket.ae.
0: Missed your morning buzz?
2: उठा ले रे बाबा।
0: Yes or no?
3: अजिंक्या, गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग सर।
3: यार आप तो लाइक प्रॉपर साइंटिस्ट हैं यार, प्रॉपर वाले। आपका दिन कैसा रहता है?
4: Not like much telling, but thing is what we are doing the quality check for the medicines what we are taking. So जो दवाई हम लोग खाते हैं उसकी microbiological purity check करना, ये हमारा profile रहता है।
3: Oh wow यार। So nothing to do with a virus or bacteria or something. मेरे को लगा कि usually ये germs इंसानों के पीछे दौड़ते हैं, ये इंसान इन germs के पीछे दौड़ता है। मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
4: कंपनी का जो हवा रहता है, पानी रहता है, वो सब चेक करना पड़ता है।
3: अच्छा, तो किसी कंपनी में आप जाते हो, पूछते हो हवा पानी कैसा है आपके? अरे आप बताओगे ना कैसा है, मैं क्या बताऊं आपको? आप इसी काम के लिए आए हो। तो आप कंपनी की हवा पानी चेक करते हो। ये अमेजिंग जॉब प्रोफाइल आपका है यार। आई मीन इट्स
4: एग्जैक्टली
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
5: ट्रैफिक हाल फिलहाल E311 शेख मोहम्मद जायद रोड लाइट ट्रैफिक तवार 4 के पास, उसके अलावा लाइट ट्रैफिक आपको मिल जाएगा D83 रिबात स्ट्रीट पे। बम्पर टू बम्पर सीन है फॉर अबाउट 8 मिनट्स। एक छोटा सा कार एक्सीडेंट वहां पे हुआ है व्हिच इज कॉजिंग द डिले। D62 नाजल हमार स्ट्रीट हेडिंग टुवर्ड्स D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट, वहां पे भी पैची ट्रैफिक है फॉर अबाउट 8 to 9 मिनट्स। एनीथिंग एल्स आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं 4305 पे। दिस इज द बिग मिक्स विद मी ज़ोरा।
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: Great coverage, vibrant color, natural finish. All in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy. Big 106.2.
1: जब वो चले तो सब देखते रह जाए, और जब वो रुके तो वक्त बीत जाए, और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा आई लव यू।
0: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। 1:02, हाँ जी, ज़ोहरा के साथ हो आप राइट हियर ऑन बिग 106.2। दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड। वी आर इनटू द लास्ट आवर ऑफ द शो। ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट एवरीथिंग, राइट? वी टॉक अबाउट फैशन, फिल्म्स एंड फन। कभी कभी मेरा मन करता है टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर मोर रिलेटेबल, है ना? आपके डे टू डे बेसिस पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप मिलते होंगे, जो यू नो मुंह पे कुछ है, पीठ पीछे कुछ और है। ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे लोग मिलते हैं, एंड आई थिंक दिस आर आई वांट टू टॉक अबाउट यू नो द डिफिकल्टीज दैट यू फेस विद हैविंग टू पुट अप विद देम। सो देर आर टू वेज ऑफ गोइंग अबाउट विद इट। ईदर यू से नहीं, मुझे तो प्रिटेंड ही नहीं करना, मुझे तो बनना ही नहीं है, दिस पर्सन इज नॉट माई फ्रेंड। दूसरा, यू हैव टू बी अ लिटल मोर प्रैक्टिकल एंड यू हैव टू थिंक अबाउट योर टाइम इन you know the place that you are, and us wajah se you have to pretend, because bana ke rakhni padti hai. Agar nahi bana ke rakhi to it will not work in your favor, only aapka nuksan hoga. What kind of a person are you? Are you the kind of person who is willing to put everything on the line but will not pretend, or are you the kind of person to say I think I have to hang back and maybe put on a show for a little bit of time jab tak mera time nahi aa jata? What kind of person are you, and what is your opinion on this, your take on this? Call me 800-106-2 pe. In the meantime, let's set the right mood, kyunki kal आ गया है वीकेंड, और ये जो है थोड़ा सा लंबा वाला वीकेंड होने वाला है।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding. Listen to her every day.
3: Mugembo! Khush hua!
4: Hi, Divankar.
5: Hi, Mansi. Good evening. How are you?
4: I'm good. How are you? How was your day?
5: Day was fantastic, quite productive.
4: आप corporate job करते हैं क्या?
5: जी.
4: लगी था.
5: Oil and gas.
4: हाँ, आपकी language से लगी है. Total email वाली language है ये. Productive and fantastic. Duly noted. Regards. I love this. You know, मुझे बिल्कुल email लिखना नहीं आता है. Thankfully, God has been very kind कि मेरे काम में मुझे email लिखने नहीं पड़ते हैं. And thanks to ChatGPT. मतलब अब तो मेरी जिंदगी चैट जीपीटी संभाल रहा है. मेरे तो डिसीजंस ही वही लेता है. मैंने उसको दे दी जिम्मेदारी. कभी कभार पर चैट जीपीटी इतनी भारी इंग्लिश लिखता है ना ईमेल्स पर के मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ. तो मुझे लगता है ये आगे भेजूंगी तो वो सोचेगा ये कहाँ से हार्वर्ड से पढ़ के आई है भोपाल की लड़की. बैंग ऑन 5 सेकंड के अंदर आप मुझे बताओ आपको मजा आया कि नहीं. रिव्यू दो मेरी इस कॉल का.
5: 10 out of 10.
4: Will you be touching base again tomorrow?
5: Definitely, I'll try.
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. Beat of Bollywood.
6: Hey, jaldi hata, tera khada na. Jal hata. Hey, jaldi hata.
2: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Traffic का हाल फिलहाल E311 Sheikh Mohammed bin Zayed Road heading towards Sharjah आपको मिल जाएगा थोड़ा सा traffic द्वार 4 के पास. उसके अलावा आपको मिलेगा the usual traffic D89 पे Airport Street. Light से moderate traffic. This is also around the D62 junction Nadal Hamar Street के पास moderate traffic है. 6 से 8 मिनट का आपको वहां पर delay मिलेगा. Al Rigga area के पास अगर आप है तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा traffic मिल सकता है. D89 Masala Street पे bumper to bumper traffic है just for about 5 to 6 minutes. Any other traffic update, aap message karke bata sakte hain 4305 pe.
2: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
8: Tum apne aap ko bahut pasand karte ho.
9: Bahut. Main apni favorite hu.
2: Ye hai Zohra on the Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: My favorite song from the movie मैं वापस आऊंगा. आपने सुना ये गाना मस्कारा right here on Big 106.2. This is the beat of Bollywood. देखो एंड हो गया ना शो बोलते बोलते. चार घंटे निकल गए. उज्ज्वल आके खड़ा हो गया मेरे सामने. ही इज गोना टेक ओवर नाउ द बिग लाइफ कीपिंग यू कंपनी अप नेक्स्ट. मेरी आवाज मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, माई हैंडल ऑन इंस्टाग्राम इज ज़ोहरा. टू को फॉलो मी ओवर देयर, शो सम लव. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन 106.2 बिग एफएम. वहां पे सारा ही फन कॉन्टेंट हम डालते हैं. एक बहुत ही फन रील आज मेरी अपलोड होने वाली है, सो मेक श्योर गो चेक इट आउट एंड शो सम लव. आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग 10 से 2 के बीच. अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: So what do we know? Partners.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 92.2 The Beat of Bollywood.
1: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. insurancemarket.ae.
2: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2, The Beat of Bollywood. The Big Mix miss किया गया?
3: तुम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
4: You know we've done this in you know our life at some point, हम सब ने ये किया है कि हमें या तो अपने लिए या तो अपनी girlfriend, boyfriend किसी ना किसी के लिए कुछ खरीदना हो, हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे तो मम्मी पापा के पैसे लेने होते थे। अब अगर सीधे मांगने पर नहीं मिलते थे तो कभी कभी हमें टेढ़े तरीके यूज करने पड़ते थे, यू नो, चुरा लिया जाके, थोड़े बहुत पैसे निकाल लिए, 20 दिरहम 50 दिरहम जो भी है निकाल लिए जाके, एंड मतलब जाके ले लिया जो भी लेना था अपने पार्टनर के लिए। यहाँ पे ऐसी छोटी मोटी चोरियां नहीं चलती, यहाँ पे इन्हें कुछ बड़ा करना था। तीन लड़के नागपुर से आए, उन्होंने डिसाइड किया हम चुराएंगे लग्जरी टैप्स, नल। हम लग्जरी नल चुराएंगे, उन नलों को बेच के हम अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए आईफोन्स खरीदेंगे। इन लोगों ने 11 लाख वर्थ के नल चुरा तो लिए, हम नल जब बेचने गए हैं वहां पे जो खरीदने वाले कहते हैं नल कौन लेगा इतने पैसों के लिए, वो भी 11 लाख। उन्हें टोटल कुल मिला के मिले सिर्फ 20,000 और तीन क्या एक भी आईफोन नहीं खरीद पाए।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 10 AM to 2 PM The Big Mix with Zohra only on Big 106.2 The Beat of Bollywood Big 106.2 Song of the Hour brought to you by insurancemarket.ae

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: Song of the Hour brought to you by Insurance Market. The track is Meethi Boliyan Mili Nayyar Ki Awaaz. Ujjwal Khanna ke saath Meethi Meethi Boliyan. Pyari Pyari jingles jo sunai thi bachon ne. Aaj wahi hua. It was my son's graduation day. In fact, pure desh mein is waqt graduation ka mausam chal raha hai. Every day, some class or the other is graduating, and so was my kid from the kindergarten class of 2026.
2: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2.
1: क्या मोमेंट है यार, बड़ा सरियल मोमेंट होता है. हालांकि बच्चों की क्या ही ग्रेजुएशन होगी, लेकिन फिर भी यू नो हर एक छोटी छोटी चीजों को स्पेशल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड गुड, यू नो स्कूल्स टुडे दे अंडरस्टैंड दैट, दे वैल्यू दैट. हमारे लिए तो जो हो गया हो गया, अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, हमारा जमाना बहुत और. बट हैविंग सेड दैट, यू नो टू मेक ऑल दीज मोमेंट्स वेरी स्पेशल, टू मेक द किड्स फील स्पेशल एंड द लर्निंग एबिलिटी ऑफ मेकिंग द किड्स understand that teachers are so important. Ye sab ka sab ye nikalta hai through the kindergarten thing and most important times of the lives are these 4-5 years in the beginning of your child's life. And today I saw that. And plus, what I also saw was this nice, beautiful platter and a set food order. Jo maine dekh ke aaya. Halanki khana hume hi bola tha lane ko. फीस भी अभी भरे और खाने भी हम लेके आए, बट ठीक है, अच्छा है. कोई ब्लूबेरी केक लेके आए, लाइक वी बेक्ड ब्लूबेरी केक. माय वाइफ इज़ अ गुड बेकर, डीसेंट बेकर, सो शी बेक्ड ब्लूबेरी केक. उसके बाद आई कुड सी छोटे मिनी पिज्जाज, देन आई कुड ऑल्सो सी सम मफिन्स, आई कुड सी क्रोसॉन्स, देन आई ऑल्सो सॉ सम फ्रूट प्लैटर, जूसेस. इट वॉज अ नाइस स्प्रेड, इट वॉज अ ब्यूटिफुल फूड स्प्रेड दैट वॉज देयर, विच ऑब्वियसली ऑल द पेरेंट्स गॉट इन टू. बट इट वॉज अ गुड अफेयर फॉर मी. आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई अटेंडेड समबडीज ग्रेजुएशन एंड इट वॉज नो बडी देन माई सन, सो आई रिलिश्ड एवरी मोमेंट ऑफ इट. अगर आपके भी बच्चे की ग्रेजुएशन हुई है अभी, तो गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062. वट वॉज योर एक्सपीरियंस लाइक? एंड यू नो समटाइम्स यू जस्ट कान एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स. यू keep holding your emotions and just keep looking at your son who's just about your reflection. That's what I experienced today. No words. Lucky Ali Kewaz. Tere mere saath, aapke saath, until 5. Tere mere saath.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव, थिंक अगेन, because right now the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now, because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae, your car, your price, your way.
1: Big 106.2 The Beat.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ब्रेक अब हर दोष के बाद ट्रैक इज मिले मिले उज्जवल खन्ना के साथ बिग 106.2 पे आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ,
1: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: मिलता नहीं है, लेना पड़ता है ना, खड़े होके लेना पड़ता है। और आप सबसे पहले ये पूछते हो कि बच्चों के लिए या फिर एडल्ट्स के लिए भी है, मतलब खाना भी हम लेके आए थे सारे के सारे पेरेंट्स मिलके। आज मेरे बच्चे की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, बट द फूड स्प्रेड वाज सो नाइस एंड वन थिंग दैट ऑलवेज कैचेस माय अटेंशन इज मनाइश। आई डोंट नो यू ट्राइड इट और नॉट, फॉर ऑल द वंस हु जस्ट कम इनटू द यूएई, आप सबको बहुत बहुत ये जानकर खुशी होगी कि एक पिज्ज़ा है जो एकदम मिडिल ईस्टर्न स्टाइल में बनता है, दैट्स कॉल्ड द मनाइश, इट्स कॉल्ड द मिडिल ईस्टर्न पिज्ज़ा। उसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल इन्फ्यूजन्स होते हैं और इसकी जो टॉपिंग होती है जनरली इट्स नॉट अबाउट वेजिटेबल्स और मीट, इट इज़ मोस्टली अबाउट ज़ातर जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज चीज़ मनाइश एज़ वेल व्हिच रियली इज़ सो नाइस, एंड ज़ातर के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव गॉट मीट सॉर्ट ऑफ टॉपिंग एज़ वेल, यू हैव गॉट वेजिटेबल्स टॉपिंग एज़ वेल, बट ये जो चीज़ का जो मनाइश होता है वो कमाल होता है। चाहे उसमें अकावी चीज़ यूज़ हो या फिर नबूलसी चीज़ यूज़ हो, ये सब बहुत कमाल फ्लेवर के होते हैं और मिनी मनाइश भी मिलते हैं ना, जस्ट इन केस यू वांट टू ट्राई, सो ट्राई विद द मिनी मनाइश एंड देन ऑफ कोर्स यू गो इनटू द बिगर ब्रेड्स। वेरी नाइस, वेरी वेरी टेस्टी एंड नथिंग लाइक अ पिज्जा बट स्टिल लाइक अ पिज्जा। ओके, टेल मी इफ यू हैव ट्राइड दिस। फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय सेल्फ ड्राइव, अरिजीत सिंह की आवाज़। द ट्रैक इज तेरी मेरी कहानी।
1: Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae।

0: 102.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
2: कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ रफ्तार पागलपन हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपने कानों तक सुनाई दे मैं उड़ना चाहता हूँ नैना दौड़ना चाहता हूँ गिरना भी चाहता हूँ बस रुकना नहीं चाहता
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव थिंक अगेन Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E-End.

into my second hour. आप सुन रहे हैं तो Big Life, Big 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ into my second hour. थीम आवर में आज बात होगी बंगाली सिनेमा की. कल परिणीता को हुए 21 साल and what a film it was. Such spectacular film. Talked about love, longing and relationship complications. जो विधु वनो चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस इतनी खूबसूरती से, इतनी सहनशीलता से, एस्थेटिकली क्वालिफाइड तरीके से, उस लेंस से, उस बहुत बारीक सुई से जो दिखाया गया है, वो पूरा एंगल, आई गेस इट ऑल स्टेम्स फ्रॉम द चार्म ऑफ बंगाल, यू नो, एंड हाउ बंगाली सिनेमा एंड द बंगाली कल्चर इज शोन इन हिंदी सिनेमा. इंटेलेक्चुअल डेप्थ की बात हो, सोलफुल म्यूजिक की बात हो, विजुअल पोएट्री की बात हो, बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत सारी कंटेम्प्रेरी ब्लॉकबस्टर्स एक पिवट से आई हैं, वो है बंगाली पिवट या बंगाली प्रेमिस. सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज ग्लोरियस हिंदी फिल्म्स जिसका जो रूट है और इट हैज़ गॉट द रैम पार्ट्स ऑफ बंगाली टच टू इट. लेट्स स्टार्ट विद परिणीता इटसेल्फ. द ट्रैक इज पीयू भोले, श्रेया घोषाल की आवाज़, और उसके बाद कम्स इन लुटेरा से गाना. द ट्रैक इज मोंटारे, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह थे. दे वर इन टू बंगाल दार्जिलिंग एंड वहाँ की कहानी थी. अगैन विजुअली इट लुक्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग. टेक केयर.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Chill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: Song of the Hour आपने सुना, brought to you by Insurance Market, श्रेया घोषाल की आवाज में. Well, ये फ्रंट रनर है बंगाली ट्रेडिशन कल्चर्स को दिखाने के लिए. पिक्चर का नाम था देवदास.
2: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: कितने महान राइटर्स, कितने महान लिरिसिस्ट, कितने सारे सिंगर्स, कितने सारे फिल्म एक्टर्स, they come from Bengal. क्योंकि culturally rooted hai ye sab cheeze, you know, arts is rooted in Bengal. And I don't know if you've got a Bengali friend. I have a Bengali friend, and when, you know, she describes how, you know, the galiya of Calcutta or Kolkata as we say it, wo kaise lagti hai, har jagah se kuch na kuch awaaz aa rahi hoti hai about sahitya, about kala, about literature. They're highly qualified people and very, very sharp, and that's why half of the industry in Bollywood is running through Bengalis. Anyway, music is the heartbeat of Bengali culture. Uske alawa storytelling ho gayi, aapki spirituality ho gayi, social change ho gaya. In sab mein jo Kolkata hai wo bahut deep rooted hai. Rabindra Sangeet jo hota hai, jisko Rabindra Sangeet kehte hain desi hindi bhasha mein, 2000 songon ka ye ek theme hai of romance, nature, spirituality and patriotism. Phir inka ek lok sangeet hota hai. Then they've got Nazrul Geeti as well. Then they've got classical Bengali music as well, जिसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल इंडियन रागास भी हैं, विच आर अडेप्टेड फ्रॉम पोइट्री, थिएटर एंड रीजनल इंस्ट्रूमेंट्स. सो ऑल इन ऑल, यू नो, द कल्चर इज सो डीप रूटेड विद पीपल ऑफ कोलकाता एंड एल्सवेयर इन वेस्ट बंगाल दैट ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई कला के क्षेत्र से उस प्रांत से ना आया हो. युवा सिंगाना अगेन, यू नो, द फिल्म वाज शॉट इन बंगाल, इट हैड ऑल द थीम्स एंड द स्क्रीन प्ले एंड ऑफ कोर्स द सिनेमेटोग्राफी ऑफ व्हाट कोलकाता लुक्स लाइक. टेक इट अवे, कभी नीम नीम कभी सख्त सख्त. रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन आपके साथ अंटिल 5 o'clock.

0: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Well, all about Bengal. Today in my theme hour, Big 106.2 पे कल परिणीता रिलीज हुई थी. 21 साल हुए उस फिल्म को रिलीज हुए हुए. कितनी खूबसूरत फिल्म थी. और ऐसी मेरे को लगता है जितनी भी फिल्में बंगाली राइटर्स ने, डायरेक्टर्स ने, या फिर किसी भी तरीके से बंगाल का एंगल लेके, कोलकाता का एंगल लेके करी है, वो फिल्म बड़ी खूबसूरत लगी है ऑर्गेनिकली. बिकॉज इतनी कल्चरल शहर है, इतना कल्चरल सिटी है, इतनी ट्रेडिशनल सिटी है, इतनी पुरानी सिटी है. सो आई एम श्योर यू नो हर एक जगह पे, हर एक नुक्कड़ पर.
1: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: आपको कहीं ना कहीं पीको तो दिखेगी, है ना? What a fine film it was, Pico. हालांकि दिल्ली से शुरू होती है और बंगाल तक पहुंचती है कहानी, कलकत्ता तक पहुंचती है कहानी. लेकिन जो बंगालीज दिल्ली में भी है ना, मुखर्जी नगर के आसपास, वहाँ पर भी जो दुर्गा बाड़ियाँ लगती हैं बड़ी बड़ी खूबसूरत, दुर्गा पूजा के दौरान वो भी बहुत भव्य, बहुत खूबसूरत लगती हैं. एंड उनका एक अपना एक सर्कल है. यू नो व्हेन यू स्पीक टू यू नो ऑल दीज बंगालीज हुव मूव्ड टू दिल्ली एंड यू नो you have a conversation with them, they've got a very different narration and storytelling tale. You know why? Again, like I'm reiterating ki unme itna sabhya bhav hai, literature mein itne high or profoundly intelligent hote hain ki aapko lagta hai ki aapko to kuch aata hi nahi hai. Like they've got such great words to talk and great stories to narrate and great topics to have their point of view and outlook. Aur isliye jitne bhi social reforms bhi hue, jahan par bhi you know हक की बात आई या अपने मन की बात आई रखने की, तो वहाँ पर भी बंगालीज ने काफ़ी इस किया. जहाँ तक पीकू का सवाल है, जैसे बंगालीज होते हैं वेरी वेरी बोल्ड एंड लाउड, दैट्स व्हाट द फिल्म वाज. एंड ऑफ कोर्स द म्यूजिक, इट वाज सो फाइन. और ये सरोद की थीम कितनी प्यारी थी पूरी फिल्म में, इतना प्यारा लग रहा था ये बैकड्रॉप में. और बच्चन साहब साइकिल चला रहे हैं. इनफैक्ट ये जो गाना आपने सुना जर्नी सॉन्ग, अभी दो तीन पंक्तियाँ जो हैं वो बंगाली भाषा में आती है. It's such a thoroughly fulfilling experience to watch Pico. To a point that you get frustrated, but at the same time, you know, you start valuing about people who are around you. Just absolutely gorgeous music. Anupam Roy ne gaane likhe bhi hain, gaaye bhi hain, banaye bhi hain. Again, he's a Bengali. Filhal, chalte hain apni is Kolkata ki bus mein chadte hue, actually Kolkata ki tram mein chalte hue. And अगला गाना सुनते हैं फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर. एंड दिस इज फ्रॉम द फिल्म गुंडे, प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर. अगेन इट वॉज शॉट बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता. टेक इट अवे आपके साथ अंटिल 5.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना चाहो।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

खूब भालो या फिर दारुन जिसको बोलते हैं, क्या गाना है सोनू निगम एंड परिणीति चोपड़ा. द फिल्म इज मेरी प्यारी बिंदु, आयुष्मान खुराना, परिणीति चोपड़ा इज द लीड, वाज द लीड रादर इन दिस फिल्म. बिग 106.2 पे फ्रॉम द रैमपार्ट्स ऑफ कोलकाता इज व्हाट आई एम प्लेइंग टुडे इन माय थीम. अबाउट कुछ ऐसी फिल्में जिसमें कोलकाता जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, डीपली इन्वॉल्व है, चाहे कहानी से, चाहे किस्सों से, या चाहे शूटिंग से, या फिर सिर्फ और सिर्फ यू नो एक एक एक एक सोल से. दैट्स व्हाट यू नो द थीम आवर इज. अप नेक्स्ट कम्स इन बर्फी. अगेन बहुत ही एस्थेटिकली खूबसूरत शॉर्ट फिल्म, थोड़ा सा बंगाल में शूट हुई, आई मीन कोलकाता में, फिर थोड़ा दार्जिलिंग में, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एंड द सॉन्ग्स वर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. प्रियंका चोपड़ा, रणवीर कपूर, डायरेक्टेड बाय अनुराग बासु. द ट्रैक इज फिर ले आया दिल. इस गाने में स्पेशली इलियाना डी क्रूज, शी लुक्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग. टेक इट अवे.

0: शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
1: दिस इज उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
0: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: हाँ जी, बहुत तेज की बर्फ पड़ रही है, हम स्नोबॉल बन चुके हैं, इतनी तेज बर्फ पड़ी है। बिग 106.2 पे उज्ज्वल खन्ना के साथ हैं आप। 35 डिग्री सेल्सियस, विच इज नॉट द केस एट ऑल व्हेन यू स्टेप आउटसाइड, यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज़ इट फील्स लाइक 44 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स शोइंग 35 डिग्री सेल्सियस विद द मिनिमम ऑफ अबाउट 32 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट तू ही है अरिजीत सिंह की आवाज में आपके साथ अंटिल 5।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस यूएई, ओमान, कतर, केएसए and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour brought to you by insurancemarket.ae.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: This June, take your shot at millions with Big Ticket.
4: Score a guaranteed 25 million dirham grand prize.
3: Plus, five more winners take home 1 million dirhams each.
4: And weekly cash prizes still to be won.
3: So, what are you waiting for?
4: Buy your ticket now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
6: Listen to her every day.
7: Mugambo! Khush hua.
8: Hi, Divankar.
9: Hi, Mansi. Good evening. How are you?
8: I'm good. How are you? How was your day?
9: Day was fantastic. Quite productive.
8: आप corporate job करते हैं क्या?
9: जी.
8: लगी
9: था. Oil and gas में.
8: हाँ, आपकी language से लग गया. Total email वाली language है ये. Productive and fantastic. Duly noted. Regards. I love this. You know, मुझे बिल्कुल email लिखना नहीं आता है. Thankfully, God has been very kind कि मेरे काम में मुझे email लिखने नहीं पड़ते हैं. And thanks to ChatGPT. मतलब अब तो मेरी जिंदगी चैट जीपीटी संभाल रहा है. मेरे तो डिसीजंस ही वही लेता है. मैंने उसको दे दी जिम्मेदारी. कभी कभार पर चैट जीपीटी इतनी भारी इंग्लिश लिखता है ना ईमेल्स पर कि मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ. तो मुझे लगता है ये आगे भेजूंगी तो वो सोचेगा ये कहाँ से हार्वर्ड से पढ़ के आई है भोपाल की लड़की. बैंग ऑन 5 सेकंड के अंदर आप मुझे बताओ आपको मजा आया कि नहीं. रिव्यू दो मेरी इस कॉल का.
9: 10 out of 10.
8: Will you be touching base again tomorrow?
9: Definitely, I'll try.
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आपकी हमारी बातें चलती हैं द एंटायर डे ऑन बिग 106.2, बट कभी कभार यू नो बातें इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं, चुप जाती हैं और आपको लगता है कि ओ माय गॉड ये हुआ तो क्या हुआ। अब आपको पता है दैट वी वुड नॉट बी एबल टू टॉक अ लॉट ऑन द माइक, बट हमारे जो ओपिनियंस हैं बहुत स्ट्रांग हैं एंड ये सारे ओपिनियंस निकल कर आ रहे हैं। ये जो कल रात को एक जोक स्टूडियो से निकल कर आया एंड मानसी हैज़ गॉट अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट अबाउट इट। मानसी हाय।
1: Hi.
0: Okay, so do you want to crack the joke first or do you want to crack open the joke first?
1: First of all, I don't think it was a joke.
0: It was not a joke. Okay.
1: It is something which is there, it has been there.
0: Yeah.
1: It just because we live in a world of social media and internet,
0: I'm
1: so glad that people are calling out that behavior.
0: So we are not basically calling out that joke because that joke is not worth calling out on radio on Big 106.2, but I'm sure ki aapne videos dekh li hongi jo Instagram pe gayi hain. It was a proper slander that happened. एंड उसके बीच में जो सब टिकट देके स्टैंड अप कॉमेडी देखने जाते हैं उसके बीच में कैसे ये सब्जेक्टिविटी आ जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट।
1: आई थिंक somehow स्टैंड अप कॉमेडियंस हु आर होस्टिंग सच इवेंट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। ओके, आई अंडरस्टैंड आप क्राउड वर्क करते हो, बट आप देयर आर सो मेनी स्टैंड अप कॉमेडियंस। आई रिमेंबर वी वर टुगेदर बिस्वा।
0: Yeah,
1: कितना क्लीन क्राउड वर्क होता है।
0: नॉट
1: एवरीथिंग हैज टू बी यू नो ऑब्जेक्टिफाइंग, बॉडी शेमिंग, गालियां। आप ह्यूमर क्लीन भी कर सकते हो। हर
0: वो चैलेंजिंग है ना। आसान काम हर कोई इंसान जो है वो आसान काम चुनता है, और फिर जब प्रश्न उठाए जाते हैं तो उसमें बोला जाता है कि अरे प्रश्न क्यों उठा रहे हो, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अगर आप कुछ भी अंड शंड कुछ भी बोल दोगे तो फिर तो जो डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बदल जाती है। बट एनीवे, आई थिंक यू कैन सी व्हाट मानसी सेइंग ऑन हर रील एज वेल एट मानसी टॉकिंग और व्हाट शी वाज ट्राइंग टू डू। 370 रुपए की बिरयानी का ये जो पूरा जोक बना हुआ है इंस्टाग्राम पे और कैसे मखौल उड़ाया जा रहा है उस चीज़ का, और लोग हंस रहे हैं, जिसमें लड़कियां भी इंक्लूडेड हैं बाय द वे, लड़के भी इंक्लूडेड हैं, सब इंक्लूडेड हैं, और सबसे बड़ा जो शहंशाह है वो है वो स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: राइट, बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड व्हेन आई पुट आउट दैट रील, मोर देन वुमेन मेन आर कमिंग एट मी।
0: Really?
1: उन्हें लग रहा है कि या इट्स नॉर्मल। बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है कि देन व्हाई डू यू इवन से यस टू गोइंग आउट विद द गाय। किस सेंस से एक डेट, एक डिनर, एक ट्रांजैक्शन हो जाता है, मुझे समझ नहीं आया।
0: ओह, दैट्स वेरी वैलिड एक्चुअली। डेट ट्रांजैक्शन कैसे बदल सकता है, ट्रांजैक्शन में कैसे बदल सकता है, इंटरेस्टिंग। तो डेट कैजुअली मैंने भी किया है, तूने भी किया है, और कैजुअल डेटिंग का हमारा बिल्कुल भी ये इंटरप्रिटेशन नहीं होता कि हमें बियॉन्ड एक चीज हमें चाहिए। हम सिर्फ उस समय जानने पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड उसके बाद समझ में आता है कि ये पर्सन हमारे साथ रहने लायक है, नहीं लायक है। लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है ना और उसका जो एनालिसिस है वो लड़के अपनी तरफ से देते हैं और लड़कियां अपनी तरीके से देती हैं, और मेरे ख्याल से यही वो इंटरप्रिटेशन निकल कर आया जिससे मानसिकता भी सामने आती है।
1: ट्रू, बट आई मीन आई विल नॉट इवन स्टीरियोटाइप। आई हैव बीन विद सम ग्रेट मेन एंड आई थिंक आई कैन वाउच फॉर यू। यू व्हेन यू वर सिंगल यू वर आउट ऑन डेट, सो वो कनेक्शन इज more important than the transaction ki kisne kitne ka khana khaya. But there are men, such men who exist.
0: Guys, serious discussion hai ye, and I think Mansi would be able to continue and talk about it further. There's just a line, one very thin line, you know, being gracious and being obscene and being subjective, that line is so important. और अगर वो लाइन समझ नहीं आती है तो मेरे को लगता है ज्योमेट्री की क्लास में जाना चाहिए और स्केल लेकर आना चाहिए। Big 106.2 पे winding up from here. See you tomorrow, sharp at 2.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव, थिंक अगेन, because right now the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now, because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae, your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E.N.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो?
1: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
3: This June, take your shot at millions with Big Ticket.
4: Score! I guarantee 25 million dirham grand prize.
3: Plus, five more winners take home 1 million dirhams each.
4: And weekly cash prizes still to be won.
3: So, what are you waiting for?
4: Buy your ticket now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
6: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: 35 to 40 minute delay agar aap Sheikh Zayed pe, it's bumper to bumper Dubai Mall ke paas. Heavy traffic at the moment. Sheikh Mohammed bin Zayed Murid to Muhesna dikha raha hai 47 minutes. Ek ghanta maan lo first. Al Khail again slow moving. There's patchy traffic if you're on the Hesse Street. A 15 to 20 minute delay. Anything else you'd like to report, let me know. 800-1062 par.
6: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
8: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
6: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill. I'm Mansi. You know, I'm big on opinions when it comes to dating, when it comes to love, relationships. So I had to speak about this. And this video is making rounds on social media. Just make bande ne ek stand-up comedy show mein ye bula hai ki agar I'm taking a girl out on a date and if I'm spending money on a meal, I'm looking for a return investment ka. I have Nikita with me right now. Hi Nikita, good evening.
2: Hi, how are you?
1: I'm good, how are you?
2: I'm fine.
1: So Nikita, I'm sure you've seen that video, har jagah wo video viral ho raha hai. But my question here is, kab se hum ek date ko more than a connection, ek ट्रांजैक्शन के तौर पे देखने लगे? लाइक एज गर्ल्स आई डोंट थिंक सो, हम ये सोचते हैं जब हम किसी से मिलने जाते हैं, हम जेन्युइनली मिलने जाते हैं. एंड आई कैन स्पीक फॉर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स.
2: या इट इज ऑलवेज अ कनेक्शन, वी डोंट मेक ट्रांजैक्शंस, दैट वी डूइंग बैंक.
1: सो यू आर सिंगल राइट? सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू गो ऑन डेट्स? डू यू स्प्लिट द बिल और यू लेट द गाय पे द बिल?
2: आई विल अलाउ हिम टू पे इट बिकॉज़ आई विल नॉट आस्क दैट आई एम गोना स्प्लिट बिकॉज़ आई वांट टू सी हाउ इज रिएक्टिंग इफ आई एम नॉट पेइंग द बिल.
1: That is true, but after this incident, I think a lot of girls would insist on paying because I don't know if there is an unspoken expectation attached to it nowadays. Like, I don't know the psychology behind paying the bill.
2: After 2-3 incidents, that person acted weirdly. So yeah, I came to know that he wanted something from.
1: Oh, so you went on dates and he was taking you out on dates and he acted weirdly after that.
2: Yeah, when I was not paying.
1: So he wanted you to pay for the date?
2: Every time. Yeah, that means if I'm not getting something, you have to pay for it.
1: तो ये तो transaction ही हो गया ना?
2: हाँ, तो ये I think past 2-3 सालों से हो रहा है.
1: तो ये किस दुनिया में हम रह रहे हैं कि लोगों को like एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है? Everything is just give and take.
2: That's why we are single, man.
1: That is true. That I have stopped going on dates. I don't even remember. And to be honest, every time I went on a date, I made sure that I at least split. क्योंकि मुझे हमेशा ये डर रहता है ये अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस का. आई थिंक इट्स द हाइपर इंडिपेंडेंस दैट वी हैव, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसी की शिवलरी के पीछे क्या छिपा हुआ है.
2: ओके, आई गिव यू, आई फील से फॉर एग्जांपल इन वॉर समवन लूजेस अ जॉब एंड दे जस्ट वांट टू स्पीक आउट देयर माइंड एंड दे वांट टू मीट पीपल ऑन कॉफी और समथिंग, मेबी देयर इज नथिंग इन माइंड एंड दैट पर्सन आल्सो लॉस्ट अ जॉब,
1: राइट,
2: एंड वी आर गोइंग टू अ नॉर्मल कैफे. ओके, वी जस्ट पेड आउट. Huh. But then we can't expect anything in that, right? That could be a good
1: thing. Exactly. Also. When you go out with friends, when you're meeting someone else, उस एक मीटिंग में अगर आपने दोस्त को खाना खिला दिया या फिर आपने अपने किसी कॉलीग को खाना खिला दिया तो वहाँ पे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं आती है. बट पता नहीं ये डेट्स पे ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्यों आती है, राइट?
2: इट इज गेटिंग कॉमन. People want to make it common, so then it becomes a stereotype.
1: I think that is why most of the women that I know are single, and because of such people, जो बहुत कम हैं, I'm not stereotyping men here. बहुत सारे लड़के जो अच्छे हैं, वो बेचारे भी single रह जाते हैं, क्योंकि इन्होंने माहौल खराब करा हुआ है.
2: Yeah.
1: So when was the last time Nikita date पे गई थी?
2: Maybe in last December.
1: बहुत काफी time हो गया है. Remember the next time you go on date, please pay. So that there is no unsaid expectations. Thank you so much, Nikita. Yes. Thank you so much. You have a great evening.
2: Thank you. Bye.
1: If you are single, आप अगर जाते हो dates पे, तो ये कुछ surprising है ही नहीं, क्योंकि ये सबके साथ हुआ है कहीं ना कहीं. And इस बंदे ने बस openly बोल दिया, तो ये बाहर आ गया है. But I'm very shocked, यार. आज के ज़माने में कहाँ मिलेंगे फिर true connections? How will you find love when every single person out there is looking for a barter? What do you think about this entire scene, this entire video that's trending on social media? 800-1062 is the number to dial.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
4: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी। Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ।
5: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money Money use करो।
4: क्या? Salary के लिए?
5: हाँ, अपनी salary directly E&Money Money में receive करो और ढेर सारे benefits पाओ।
4: जैसे क्या?
5: जैसे easy local और international transfers, bill payments, free card, सब कुछ एक ही app से।
4: Wow, ये तो काफी useful लग रहा है।
5: बिल्कुल, E&Money Money के साथ आपकी salary और भी ज्यादा काम करती है। इससे salary day काफी आसान हो जाता है। तो E&Money Money के साथ फिक्र छोड़ो। Terms and conditions apply.
6: ए, जल्दी हटा, तेरा खटा ना। चल हटा।
7: हाँ,
6: अरे जल्दी हटा।
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: एक घंटा दो मिनट का डिले है शेख जात पर, हैवी ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर सिचुएशन, ट्रैफिक चलिंग वेरी वेरी स्लो इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स रिगा एट द मोमेंट। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अगेन, 45 मिनट डिले इन आदिल हमर, फेस्टिवल सिटी, राशिदिया, इट्स ऑल पैक्ड, फोन लाइंस आर पैक्ड हियर। वी आर डिस्कसिंग दैट वायरल वीडियो दैट्स मेकिंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया, 370 रुपए की बिरयानी। अ लॉट ऑफ वुमेन कॉलिंग मी एंड आई वांट मेन ऑल्सो टू टेल मी आपको कैसा लगा जब आपने ये कहानी सुनी, ये वीडियो देखा। सो या 800-1062 इज द नंबर टू डायल। कीपिंग यू कंपनी हियर, नैंसी, दिस इज द बिग थ्रिल।
0: selfdrive.ae नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द यूएई, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। बिग 106.2।
9: ए बुड्ढे, ए बुड्ढे।

0: नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा, सब आ रहा है। देखिए
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: So I have a lot of women calling me right now, but I also want a man's opinion. We're discussing that video that's making round on socials. जो एक stand-up comedy show में बंदे ने mic पकड़ के कह दिया कि मैं date पे गया, मैंने 370 की बिरयानी खिलाई, आप मुझे return on investment चाहिए, which is such a sad thing. And I'm not saying कि सारे बंदे ऐसे होते हैं, but कुछ होते हैं. Such men exist. Right now I've got Hassan with me. Hi Hassan, good evening.
2: Hi, good evening.
1: I am so glad that a man, a guy is joining me on air. So Hassan, I'm sure you know the whole story. So आप क्या कहना चाहेंगे कि इस लड़के ने खुले आम ऐसी बात की है?
2: First and foremost, I am really shocked. Like ऐसी कोई बात, मतलब मजाक में भी नहीं करना चाहिए ऐसी बात. See, मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि अगर आपके जेब में पैसे है ना, तभी आप बंदी को डेट पे लेके जाओ. एंड लाइक फॉर अ मैन, एक मर्द के लिए यही होता है कि वो पैसे दे. अगर आपकी बंदी कितनी भी अच्छी हो, वो अगर आपको नहीं भी बोलती है कि नहीं हम लोग शेयर करते हैं या मैं दे देती हूँ इस बार, वट एवर इट इज, बट फॉर मी आई डोंट थिंक कि किसी मर्द को भी पैसे का डिमांड करना चाहिए अगर आप किसी लड़की को डेट पे या कहीं पे भी लेके जा रहे हो तो.
1: बात पैसे की डिमांड भी नहीं, आई एम स्टिल ओके, यू नो वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, आई एम ऑल इन फॉर स्प्लिटिंग द बिल, बट ये अनसेट एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि अगर मैं तुम्हें खाना खिलाने या कॉफी पिलाने लेकर जा रहा हूँ, देर हैज टू बी सर्टेन रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे. आई डोंट नो दिस साइकोलॉजी.
2: Absurd, like वो आजकल के, मतलब पता नहीं ये जो जनरेशन है उनके मेंटालिटी कैसी हो गई है, बट हमारे जमाने में तो मतलब वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लाइक रिटर्न्स. लाइक व्हाट इज दिस, हम लोग बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं कि भाई मैं आपको माल दूंगा तो आप मतलब मुझे उसकी पेमेंट करोगे. इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट अ बिजनेस.
1: Absolutely, and I exactly what I mentioned. Not all men are like that. But ये दो चार के चक्कर में ना बहुत सारे लोग जो है उन्हें stereotype कर दिया जाता है. But my problem here also is with the stand-up comedy show when an entire audience laughs at a problematic joke on stage. Then I don't know कि किसकी गलती है.
2: Actually, you should stand up and revolt against this kind of like behavior. आपको बोलना चाहिए कि नहीं आप गलत बोल रहे हो भाई.
1: Exactly.
2: आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए. मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखता हूँ, बट मैं चुनिंदा लोगों का ही देखता हूँ, जैसे जाकिर खान हो गया, बहुत
1: exactly.
2: ही मतलब
1: बिस्वा कल्याण, बड़ा क्लीन कॉमेडी है.
2: या मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ ये सब चीजें, मतलब आप पब्लिक में.
1: As a man, how do you feel about the statement that he made?
2: Very, very wrong. He should apologize. ये उसको माफी मांगनी चाहिए ये बंदे को कि भाई मेरी गलती हो गई, मैंने ये ऐसा बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए.
1: मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, मैंने ना रील डाली अपने पेज पे इसी टॉपिक पे, और इतने सारे बंदे, and I think most of them are not from here, they're from India. They're coming at me. वो मुझे सुना रहे हैं कि फिर डेट पे लड़कियाँ जाती ही क्यों है.
2: वो बंदा अगर पूछे ना तभी लड़की हाँ बोलेंगे, लड़की थोड़ी ना लड़के को पूछ रही है कि तुम आ रहे हो क्या डेट पे मेरे साथ.
1: एग्जैक्टली, और उसने इतनी ऐसी ऐसी बातें बोली हैं उस माइक को पकड़ के जो हम यहाँ बात भी नहीं कर सकते हैं. बट देर इज अ प्रॉब्लम, मतलब सम पीपल रियली नीड अ रीबूट ऑफ देयर थॉट्स, देयर ब्रेन्स, क्योंकि कुछ गड़बड़ चल रही है. बट आई एम सो ग्लैड हसन दैट यू कॉल्ड, एंड देर आर मैन लाइक यू हु आर कॉलिंग आउट दिस बिहेवियर, एंड थैंक यू so much.
2: Most welcome. It was a pleasure talking to you.
1: Same here. So yeah, everybody has an opinion on this thing that's going viral on socials, and we're also going to put up a reel, so definitely check it out. It's up on our Instagram page. But I think we have to call out such behavior. It's much needed. We're in 2026, yeah. Big 106.2.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is the Big Thrill. काफी भारी subject पे काफी भारी बातें हम आज शाम कर रहे हैं. We're talking about that viral video 370 की बिरयानी कब से आपको entitlement देने लगी. And of course we're questioning stand-up comedy shows के comedy clean भी तो हो सकती है. Why do you have to do such crowd work जिससे लोग जो है अनकंफर्टेबल हो जाएं एंड इंटरनेट स्टार्ट्स कॉलिंग यू आउट. आई थिंक दे कैन बी क्लीन डिसेंट ह्यूमर एज वेल. दिस आर आल्सो गिविंग यू चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स प्लस वी प्लेइंग द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज. 3 चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. आई नो साउंड्स वेरी वेरी इजी बट वेट अंटिल यू प्ले दिस गेम. खेलना है तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल.

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: Early in the morning.
3: Come on.
0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding.
4: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jetor T2.
5: Yeah, right. I wish.
4: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Al Furjan before 30th of June and boom, the Jetor T2 is yours.
5: And the apartments?
4: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
5: I'm going now.
4: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
0: Missed your morning buzz?
6: Yes or no?
7: अजिंक्य गुड मॉर्निंग.
8: गुड मॉर्निंग सर.
7: यार आप तो लाइक प्रॉपर साइंटिस्ट हैं यार, प्रॉपर वाले. आपका दिन कैसा रहता है?
8: नॉट लाइक मच चैलेंजिंग, बट थिंग इज व्हाट वी आर डूइंग द क्वालिटी चेक फॉर द मेडिसिन व्हाट वी आर टेकिंग. तो जो दवाई हम लोग खाते हैं उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल प्योरिटी चेक करना, ये हमारा प्रोफाइल रहता है.
7: ओह वाओ यार. So nothing to do with a virus or bacteria or something. मेरे को लगा कि usually ये germs इंसानों के पीछे दौड़ते हैं, ये इंसान इन germs के पीछे दौड़ता है. virus मैं तुम्हें खा जाऊंगा.
8: कंपनी का जो हवा रहता है, पानी रहता है, वो सब चेक करना पड़ता है.
7: अच्छा, तो किसी कंपनी में आप जाते हो, पूछते हो हवा पानी कैसा है आपके? अरे आप बताओगे ना कैसा है, मैं क्या बताऊँ आपको? आप इसी काम के लिए आए हो. तो आप कंपनीज की हवा पानी चेक करते हो. ये अमेजिंग जॉब प्रोफाइल आपका है यार. आई मीन इट्स
8: एग्जैक्टली
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
11: 36 degrees outside, we're trying around 31. Excessive heat, humidity filal 53% par.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे, बोल रही थी कि हाउस स्मार्ट कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: आई कैन
2: बिग 106.2।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill. I'm Mansi right here on Big 106.2, The Beat of Bollywood. We are playing the 5-second rule on the phone lines. Faryal, hi, good evening.
2: हाय गुड इवनिंग,
1: कैसी है मानसी? आप कैसे हो? बड़ा अच्छा नाम है, इसका मतलब क्या होता है?
2: आपको हंसी आएगी, शेर का खानदान.
1: शेर का खानदान इस फरियाल?
2: यस.
1: अरे वाह, शेर का खानदान, यार क्या कमाल नाम है. आई लव वो पेरेंट्स जो बड़ी थॉट डाल के अपने बच्चों के नाम रखते हैं. कितना सोचा होगा
2: उन्होंने.
1: कोई क्लास में थी एक और फरियाल आपकी? क्योंकि मेरी क्लास में और 5 मानसीज थी, तो मेरा बड़ा कॉमन सा नाम था.
2: दुबई में तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन अपनी कंट्री में कुछ कुछ मिल जाती
1: है. देखो कितना यूनिक नाम है, मतलब मम्मी पापा ने मेहनत तो करी है. आपको नहीं अच्छा लगता था अपना नाम बचपन में?
2: लेकिन हर कोई ऐसी पूछता था जैसे आपने पूछा अभी.
1: फिलहाल फरियाल विल प्ले द 5-second रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू फ्यू कैटेगरीज. 3 चीजें बतानी है फटाफट खटाखट.
0: 5-second rule.
3: Oh yeah.
1: Quickly tell me 3 ऐसे fruits जो A से शुरू होते हैं.
2: Apple, apricot, ananas.
1: Very very nice. Not bad at all. 3 इमरान हाशमी की फिल्में.
2: Murder. नाम नहीं पता.
1: हैं?
2: और
1: केरी नाम नहीं पता. Quickly tell me 3 ऐसी चीजें जो येलो कलर की होती हैं और आप खा भी सकते हैं.
2: मैंगो और पपीता,
1: पपाया
2: और अनानास.
1: ये अनानास भी अटकी हुई है. बाय द वे पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड, अनानास इज पाइनएप्पल. 3 थिंग्स दैट यू शुड नेवर एवर टेल योर हस्बैंड और योर बॉयफ्रेंड.
2: मैं गुस्से की बहुत तेज हूँ और मैं नहीं बोलती.
1: 3 ऐसी चीजें जो आप नोटिस करती हैं लड़कों में, बंदों में.
2: नेचर वाइज अच्छा हो, शक्ल अच्छा हो और काम अच्छे करता हो.
1: तो इन तीनों में से प्रायोरिटी क्या है? शक्ल का अच्छा, नेचर के काम?
2: नेचर नेचर नेचर.
1: पर नेचर तो देख के समझ नहीं आता ना फरियाल.
2: आ जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन में. मेरी जजमेंट पावर बहुत अच्छी है.
1: तो मतलब कभी भी आप गलत नहीं हुए लोगों को जज करने में, हमेशा सही बंदे आपने जज करे हैं. फिर तो हो गई होगी शादी वादी आपकी?
2: अभी तक तो. हाँ हाँ, 11 साल हो गए, 2 बच्चे हैं.
1: यार आवाज से लग नहीं रहा है, पता नहीं कौन सा साबुन लगा रही है फरियाल. मूविंग ऑन क्विकली, टेल मी 3 थिंग्स दैट यू कैन मेक आउट ऑफ मिल्क. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स हाउ यू प्ले दिस गेम. शी इज गॉट मोस्ट ऑफ हर आंसर्स बैंग ऑन विद इन 5 seconds. फरियाल आप प्रैक्टिस करते हो कि बाय डिफॉल्ट ही हाजिर जवाब हो?
2: ये मेरे फादर से मुझको जीन्स में मिला है.
1: हाजिर जवाब भी. It was lovely talking to you. You played exceptionally well. You have a great evening. I hope you had fun.
2: Yeah, thank you. Nice
1: talking to you. Bye. Bye. Yeah, ye 5-second rule. Iklauta rule is game ko khelne ka hai. Phone uthana hai aur mujhe call karna hai 800-1062 par.
0: Big 106.2. Fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

असलम के पास मूवी का नाम प्रिंस कीपिंग यू कंपनी हियर। मैं हूं मानसी। वी प्लेइंग द 5 सेकंड रूल। इट्स अ फन गेम। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। मैं आपको देती हूं कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर। आई नो इट साउंड्स वेरी इजी बट वेट अंटिल यू प्ले दिस गेम। खेलना है तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल।

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है?
1: क्यों ली? तेरे बाप का माल है?
2: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
3: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill and Mansi. We're playing the 5-second rule. Right here joining us is Priyanka. Good evening.
2: Hi, good evening, Mansi. How are you?
1: I'm good, my love. How are you?
2: All good. Thanks for asking. Tell me, please.
1: Tell you what? Kya sunna chahti hai, Priyanka?
2: Okay, I'm all ready. All set.
1: Achha, she just wants to play the game. She doesn't want to talk to me. Wow, I'm heartbroken. Kya karti hai Priyanka waise?
2: I sell insurance.
1: You sell insurance? Very, very nice. Are you in the car with your friends?
2: I am in the car with my husband.
1: Ab aayega mazza. Chalo, we'll play the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. Teen cheezi batani hai. 5 seconds ke andar. All the best.
0: 5-second rule.
3: Oh, yeah.
1: Quickly name 3 Sunny Deol ki movies. तो टाइम खत्म हो गया. सुनो, गदर गदर टू एक बंदा खेलो वरना टाइम ऐसे खत्म हो जाएगा. सो डिसाइड. मूविंग ऑन. 3 बॉलीवुड सॉन्ग्स जिनके टाइटल में दिल आता है. अरे रे रे, खत्म हो गया टाइम.
2: फटाफट,
1: क्योंकि 5 सेकंड है ना. 1, 2, 3, 4, 5. खालास, फिनिश. 3 आइसक्रीम फ्लेवर्स विच आर नॉट वनीला और चॉकलेट.
2: Strawberry, pistachio,
1: okay,
2: mango.
1: Very nice. 3 Bollywood actors जिनका नाम A से शुरू होता है.
2: आमिर खान, अक्षय कुमार
1: and
2: अभिदेव.
1: Oh, nice. Now she's getting into the groove. 3 things that you pick from a hotel room.
2: Towels, soap, shampoo.
1: Towels.
2: Hey,
1: Priyanka, towels?
2: Hotel
1: वालों को ना इंश्योरेंस करानी चाहिए अपने टॉवल्स की. प्रियंका जैसे लोग आके ले जाते हैं.
2: कुछ तो करना पड़ेगा.
1: 3 things if at all you had a chance you'll change about your husband. अब आएगा बस.
2: Job and
1: time खत्म हो गया. क्या क्या क्या क्या क्या color?
2: Color like little more two tones down and job so that he become more rich and nature थोड़ा सा, that's it.
1: Two tone down कैसे होगा? Foundation थोड़ी ना है, husband है.
2: मतलब थोड़ा dark और जो है उससे थोड़ा dark और, that's it.
1: वाह. 3 things that you find only at an airport. Three Bollywood movies जिनके टाइटल में हम आता है.
2: और हम साथ साथ.
1: Not bad. हिट और मिस था, बट पतिदेव की हेल्प से काफी आंसर्स आपने दे दिए. क्या नाम है टू टोन लाइट का?
2: लक्ष्मण.
1: अरे वेरी नाइस. हाय लक्ष्मण. ये पहली मिली है. शी वॉन्ट्स टू चेंज योर कलर, तो थोड़ा एक डार्कर फाउंडेशन ले आओ, लगा के घूमो. ये पहली बीवी है.
4: ये दुबई की धूप में खड़ा हो जाता हूँ थोड़ी देर के.
1: हाँ, मैं कह रही हूँ कि सुबह शाम जैसे लोग अपना अचार पापड़ सुखाते हैं ना, इनको बाहर 3 घंटे आप सुखाया करो. तो अपने आप टू शेड्स जो डार्क हो जाएगा. वेल, लवली टॉकिंग टू यू गाइस. हैव अ सेफ ड्राइव बैक होम. प्रियंका, यू प्लेड रियली वेल फॉर द फर्स्ट टाइम.
2: थैंक यू.
1: बाय. यही है 5-second rule. आपने खेलना है, एक ही रूल है. कॉल करना है मुझे 800-1062 पर.

0: away.
1: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
2: Yeah, right. I wish.
1: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Alforjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
2: And the apartments?
1: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
2: I'm going now.
1: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
5: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: 36 डिग्री स्टिल, लो जाएगा अराउंड 31, प्रीटी ह्यूमिड टुडे, 56% पे है ह्यूमिडिटी।
5: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, you have Big Thrill Mansi and very thrilled, very excited because we're getting into a long weekend and here I'm giving you a chance to win open movie tickets. Yes, brilliant lineup and aaj hi release hui hai. Main wapas aaunga and great reviews coming in. The movie has some brilliant actors together. We've got Diljit Dosanjh and Naseer Sahab sharing the screen space together. Saath mein Imtiaz Ali, Irshad Kamil, Mr. Rehman, jinhone hame unforgettable gaane aur music diya hai. They are reuniting again. Vedang Raina, Sharvari also a part of this movie. In fact, the movie also reunites Diljit and Imtiaz post Amar Singh Chamkila. Is movie ko लिखा है अली एंड नयनिका मेहतानी ने एंड द मूवी ओपन्स विद द चंडीगढ़ बेस्ड 95 ईयर ओल्ड ईशर सिंह ग्रेवाल प्रेड बाय नसीर साहब हु इज वेरी वेरी डेस्परेट टू गो टू सरगोदा. इट्स ऑन इंडिया पाकिस्तान की पार्टिशन एंड ग्रेट रिव्यूज कमिंग इन. इट इज अ इम्तियाज अली मूवी सो इट हैज़ टू बी थॉट प्रोवोकिंग. इट विल स्टे विद यू फॉर अ वाइल एंड इट इज अ लव स्टोरी दैट इज गोइंग टू लास्ट विद अस. आई लव इम्तियाज अली एनीथिंग एवरीथिंग ही डज. मैं काफी बायस रहती हूँ तो आपको मैं दे रही हूँ मौका टू गो एंड वॉच इधर मैं वापस आऊंगा या फिर बहुत सारी और मूवीज भी रिलीज हो रही है. आई एम डेफिनेटली वॉचिंग दिस वन. बहुत सिंपल है, वी टॉकिंग अबाउट इम्तियाज अली, इरशाद कामिल एंड ए आर रहमान. ऑल यू हैव टू डू इज मुझे बताना है

When I play you this, आपको इम्तियाज अली की कौन सी मूवी याद आती है? For all those who are a fan of this movie, for you it will take 1 second. If you've guessed it, 800-1062 is the number to dial your chance to win open movie tickets. While you're at it, इम्तियाज अली and दिलजीत की अमर सिंह चमकीला से.

0: Summer, upgrade your drive with Jetor. Take advantage of unbeatable summer offers such as buy now, pay next year, zero VAT or zero interest. And that's not all. Enjoy savings of up to 7,000 dirhams on select models with EMIs starting from just 966 dirhams per month. Plus, every drive comes with peace of mind thanks to a warranty of up to 1 million kilometers. Visit Jetor showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetor UAE, part of Elite Group Holding. TNCs apply. Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अल ऐन में।
2: चलो चले अलराज।
4: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: All right, still slow moving. अभी भी 50 मिनट का डिले है एग्जैक्ट पर डीआईएफसी बिजनेस बे। इट्स प्रीटी पैची। दिस ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन ज़ायद मर्डर टू मोहिसना, इनफैक्ट वर्गा से शुरू होता है, गेट्स बेटर पोस्ट मोहिसना, राशिदिया, नादल हमर। देयर इज आल्सो स्लो मूविंग ट्रैफिक नियर दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट एंड नियर सत्वा। इसके अलावा कहीं अटके हैं मुझे बता सकते हैं 800-1062 पर।
4: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों री, तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. I like

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, this is the Big Thrill. Mansi, yahan par was your chance to win open movie tickets to go and watch any movie that you feel like. And I'll ask you a question. Aaj release hui hai Imtiaz Ali ki, main wapas aaunga. Maine Imtiaz Ali ki hi ek movie se aapko ek BGM sunaya tha. Only the fans know the BGM. And I've got Fawad with me. Hi.
2: Hello Mansi, kaise ho aap?
1: Main theek hoon. Fawad, aapka hello bada stylish hai. Ek baar bol ke phir se suna na. Hello.
2: हेलो
1: इसी पे कहानी शुरू, इसी पे खत्म हो जाएगी. हेलो, बड़ा अच्छा हेलो है यार ये.
2: थैंक यू वेरी मच.
1: तो आपने प्रैक्टिस करी है कि बाय डिफॉल्ट ऐसा हेलो निकलता है?
2: नहीं, ये निकलता ही है.
1: अच्छा, वरना मुझे लगा बोलोगे कि नहीं, लड़कियों के सामने निकल जाता है. थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. वैसे करते क्या आप लड़कियों की तारीफ करने के अलावा?
2: आजकल यही चल रहा है.
1: यही चल रहा है, अच्छी बात है. बस जब तक आप वो 370 की बिरयानी का हिसाब ना मांगे, तारीफ करते रहे, हम भी खुश, आप भी खुश.
2: सही बात है.
1: ना? फिलहाल मैंने एक म्यूजिक, एक बैकग्राउंड पीस आपको सुनाया था. सो द मूवी वॉज
2: रॉकस्टार.
1: एब्सोल्युटली करेक्ट. कितनी बार देखी है रॉकस्टार?
2: मैं बेसिकली नॉर्मली मेरे फोन का ना रिंगटोन रहता है ये.
1: ओहो, तो मतलब टूटा है आपका भी दिल?
2: नहीं नहीं, बहुत क्लोज है ये म्यूजिक, बहुत क्लोज टू हार्ट है, ऐसी बात नहीं है.
1: नहीं, बट रॉकस्टार से वही लोग रिलेट करते हैं ना जिनकी आशिकी अधूरी रह जाती है.
2: नहीं, जरूरी नहीं है. आई एम अ हैप्पीली मैरिड पर्सन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. बट वो कभी कभी कनेक्शंस होते हैं ना, आपको फील अच्छा कराते हैं गाने इस तरह के.
1: इम्तियाज अली की अगर हम बात करें तो एवरी सिंगल मूवी हैज ब्यूटीफुल म्यूजिक.
2: कहीं ना कहीं आपको पहाड़ों में, कभी दरियाओं में, कभी जंगलों में, कहीं कहीं ऐसे ले जाते हैं और ऐसी चीजें क्रिएट हो जाती है ना माइंड में कि इंसान को लगता है कि अगर मैं इस जगह पर होता तो.
1: I know. I think he's a beautiful storyteller. And अगर मैं वापस आऊंगा की भी बात करूं, मैंने देखी नहीं, रिव्यूज पढ़े. When you walk out of the cinema and इम्तियाज अली की मूवी है, आप अपने साथ एक कैरेक्टर लेके जाते हैं, चाहे वो तमाशा हो, चाहे वो जब्वी मेट हो, रॉक स्टार हो, या फिर अमर सिंह चमकीला, राइट?
2: जी.
1: तो आपको मैं मौका दे रही हूँ टू गो एंड वॉच एनी मूवी दैट यू फील लाइक. बट आई थिंक आपको रॉकस्टार अच्छी लगी है तो मैं वापस आऊंगा भी, आप जाके देख सकते हैं. कंग्रेचुलेशंस, दो टिकट्स आपके हुए फवाद.
2: मैं किसी को भी साथ लेके जा सकता हूँ?
1: हाँ, ऑफ कोर्स. दूसरी टिकट आप ही की है, ब्लैक में थोड़ी ना है. जिसको लेके जाना है लेके जाओ.
2: कोई जरूरी नहीं ना कि किसी का नाम देना पड़ेगा कि हाँ इसी के साथ जाना है तुमने मूवी देखने.
1: अभी आपने बोला हैप्पीली मैरिड हो तो बीवी के साथ ही जाओगे ना, अज्यूमिंग?
2: नहीं नहीं, वो तो पाकिस्तान में है. मतलब मैं बोल रहा था कि किस फ्रेंड को लेके जा सकता हूँ.
1: नहीं नहीं, फ्रेंड को ले जाओ सर, जब तक बीवी पाकिस्तान में चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पता नहीं चलना चाहिए. फिलहाल रॉकस्टार की बात हो रही है तो एनी फेवरेट फ्रॉम द एल्बम?
2: रॉकस्टार से अगर आप बोलो तो कोई ऐसा खास गाना नहीं, हर गाना इनका क्लास है.
1: नहीं, पर आपको एक चूज करना पड़ेगा ना, पूरी एल्बम तो मैं प्ले नहीं कर सकती.
2: फायाकुन, फायाकुन.
1: ओके, चलो वी विल प्ले कुन फायाकुन. थैंक यू सो मच, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग.
2: थैंक यू वेरी मच मानसी.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening, यह Big Thrill and Mansi. Suddenly rules of modern dating एक वीडियो ने चेंज कर दिए हैं. 370 की बिरयानी. अब आप डेट पे जा रहे हैं तो आप प्यार ढूंढने जा रहे हैं, कनेक्शन ढूंढने जा रहे हैं या फिर बार्टर डील करने. This is a big debate that has divided the internet and a lot of people have called in the evening. A lot of people are still calling and talking about it. If you haven't seen the video, please watch the video. I would like to know your opinion as a man, as a woman, कि इस बंदे ने, he's a 22-year-old guy, खुले में ऐसा statement दिया है and क्या आज के ज़माने में हम हर relationship में give on take वाला हिसाब रखते हैं. मतलब हमारा कोई भी रिश्ता बिना किसी फ़ायदे के नहीं चल सकता है. इट्स समथिंग दैट आई थिंक एज ह्यूमंस इन टुडेज वर्ल्ड हम सबको सोचने की ज़रूरत है. एक तरफ ये जनरेशन है जो सहियारा देखकर ड्रिप लगा लगा के आशकियों में गिर रही थी और दूसरी तरफ यही जनरेशन है जो 370 की बिरयानी की बात कर रही है.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उठी बाबा।
2: 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Mix, weekdays 10 a.m. to 2 p.m. only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: Think car rentals are expensive?

0: खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: हेलो बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए. एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स.
0: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।
1: तेरी

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. लव लोफाई एंड नाइट फील्स योर साउंडट्रैक्स टू अनवाइंड ओनली ऑन द बिग चिल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस डील्स इन द UAE कॉल 800-ALFRED-247 आप सुन रहे हैं बिग 106.2 The Beat of Bollywood.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।